जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकारी में कुसुम नगरपालिका पर्वत

0: जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकारी में कुसुम नगरपालिका पर्वत
1: जसको नाम नै पर्याप्त छ
2: दिदी बहिनी
1: दिदी बहिनी
2: दिदी बहिनी
1: रेडियो दिदी बहिनी हामी गर्न सक्छौ
2: हामी गर्न सक्छौ
1: गर्न सक्छौ।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 6 बज्यो।

जी एआई टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट एआई पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस एलजी लाइफ गुड।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियो।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: California.
1: Extreme energy drink.
2: तमी चो चौदह क्या में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंगे ने विवरण पी विषय मुई खाता लिख खाई हमरो खाई खाई बहु
3: कोई लोटरी बढ़ दिलवा
4: आंगी समी जो लोटरी पढ़ दिवो छामता ही गुदी
3: बढ़ दी आ बढ़ दिवा लोटरी खाली पढ़ दिम बा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बायबर खाने बने खाई विषय खाई मई विश्वास आलन फोने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बने वित्तीय संस्था कोई पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
4: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हितरी जारी संदेश
5: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
6: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बज्यो।

मादल बजो ए भाई सनई बजो ए दई मादल बजो ए भाई घिन घिन घिन घिन घिन मादल रंगाए रंगाए।

को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुसुम नगरपालिका पर्वत

0: जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकारी में कुसुमा नगरपालिका पर्वत
1: जसको नाम नै पर्याप्त छ
2: दिदी बहिनी
1: रेडियो दिदी बहिनी हामी गर्न सक्छौ